0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक्का।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

यह मत पूछो कि पहले के दिन क्यों इन दिनों से अच्छे थे। इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं। प्रज्ञा विरासत की तरह अच्छी बात है, इससे सूर्य देखने वाले लाभ उठाते हैं। प्रज्ञा और धन दोनों मनुष्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि वह ज्ञानी को जीवन प्रदान करता है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 7वें अध्याय में उपदेशक ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जैसे कि मृत्यु एक सच है, वह जीवन की वास्तविकता है और उससे भागने का प्रयास हमारी मूर्खता है। उपदेशक का आग्रह है कि मनुष्य मूर्ख नहीं बने और न ही मूर्खों जैसी हरकतें करे, बल्कि बुद्धि और विवेक के साथ अपना जीवन यापन करे। कहता है, अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बना देता है और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। श्रोताओं, अत्याचार, अनाचार और जुल्म एक प्रज्ञावान और समझदार इंसान की समझ को खत्म कर देता है, क्योंकि दुख सहने की भी एक हद होती है। अत्याचार सहते सहते व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि मजबूर होकर भ्रष्टाचार के आगे झुकने लगता है, जल्दबाजी में गलत फैसले ले बैठता है। इसीलिए उपदेशक कहता है कि किसी भी मामले में केवल शुरुआत पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि उसके अंत तक धैर्य रखा जाए, क्योंकि धैर्य अहंकार से अच्छा है। वह सब्र और सहन शक्ति की तारीफ करता है और क्रोध न करने का हमें परामर्श देता है, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह नष्ट हो जाती है। तदुपरांत 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पदों में उपदेशक अतीत पर विचार और विलाप करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। कहता है, यह मत कहो कि पहले के दिन अच्छे थे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यदि हम केवल अतीत के बारे में रोते रहेंगे तो अपने वर्तमान में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इस तरह अपने भविष्य को नष्ट कर डालेंगे। बुद्धिमानी तो इसी में है कि हम अपने वर्तमान की परवाह करें ताकि भविष्य सुरक्षित रह पाए। इसी में प्रज्ञा है, यही प्रज्ञावान की रीति है। उपदेशक धन के सदुपयोग का भी अनुरोध करता है। धन जीने के लिए आवश्यक है, किंतु धन के गुलाम न बना जाए। प्रज्ञा विवेक और बुद्धिमानी से जीवन जिए तथा हर पल ईश्वर की महिमा का गुणगान किया करें।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें और 14वें पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं: ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओ, जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से अपनाने के लिए इस तथ्य पर मनन चिंतन जरूरी है कि ईश्वर की तुलना में हम मनुष्यों का क्या स्थान है। यहां उपदेशक के दृष्टिकोण से इस पद में भाग्य या नियति की भावना छिपी हुई है। मनुष्य भाग्याधीन है और जो कुछ होना है उसकी अनिवार्यता सुनिश्चित है। बाइबल आचार्य फॉन ट्रैप कहते हैं, शेर के सामने खड़े होना बुद्धिमानी नहीं है और न ही तूफान में पाल उठाने की सोचना। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्णयों के आगे झुकना ही हितकर है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। फिर कहता है, सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। यहां उपदेशक सुलेमान का परामर्श है कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों बातों को ग्रहण करना चाहिए। उन्हें किस नजरिए से देखा जाए इसी पर विचार करता है। कहने का तात्पर्य यह कि जिंदगी तुम्हें जो दे उसे ले लो और जितना हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओ, सुख के दिन हम सभी को अच्छे लगते हैं, किंतु हम जानते हैं कि सभी दिन एक समान नहीं होते। कभी सुख तो कभी दुख, और दोनों में संतुलन बनाए रखकर जीना ही जीना है। जब जब सुख मिले, जब जब आनंद के पल आए, तो आप उसे अच्छी तरह जिए, भले कर्म करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि कब बुरे दिन आ जाएंगे यह किसी को पता नहीं होता। आगे 7वें अध्याय के 15 से लेकर 18 तक के पदों में उपदेशक न्याय और प्रज्ञा की चर्चा कर कहता है, मैंने व्यर्थ जीवन में इन दोनों को देखा है, धर्मी को जो अपने न्याय के कारण नष्ट हो गया और दुष्ट को जो अपनी दुष्टता के बावजूद बहुत समय तक जीवित रहा। न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, क्यों हानि करना चाहते हो। न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो, क्यों समय से पहले मरना चाहते हो। अच्छा यह है कि तुम एक को पकड़े रहो और दूसरे को हाथ से न जाने दो। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा। उपदेशक कहता है कि उसने अपने घमंड के दिनों में सब कुछ को देखा। जब कथित अच्छे दिन थे उसने संसार की हर खुशी में खुशी मनाई। उसने दुष्टों को फलते फूलते देखा और आनंद मनाते देखा, जबकि भले लोगों को दुख झेलते देखा, जो कि सरासर अन्याय की बात है। उपदेशक मन ही मन यह दलील करता है कि यह कैसा न्याय है कि जो भला है, धर्मी है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है और जो दुष्ट है वह आराम की जिंदगी जीता है। धर्मी और धर्म परायण व्यक्ति अपनी नेकी में ही मर जाए, यह कहाँ का न्याय है। अस्तु कहता है, न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, और फिर न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो। कहता है, जीवन में संतुलन बनाए रखना बुद्धिमानी है। श्रोताओ, ऐसा प्रतीत होता है कि सुलेमान ने अपने पुत्रों से यह कहना चाहा कि वे जिंदगी की बेकार बातों को दृष्टिगत रखते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखें। नेक बनो लेकिन बहुत अधिक नहीं, समझदार बनो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, चालाक बनो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बेवकूफ बनो लेकिन बहुत अधिक नहीं। श्रोताओ, यह सोच लेना कि सब कुछ सही मात्रा में होना अच्छा है संभवतः ठीक नहीं है, यह समझदारी नहीं है। याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह को, संत पॉल को और बहुत से अधिक संतों को उनके युग में संतुलित इंसान नहीं समझा जाता था। लोगों के प्रति
उनकी जिम्मेदारी की उनकी समझ ने उन्हें कई लोगों की नजर में असंतुलित बना दिया था। अस्तु, दुख और सुख, धर्म और संसार, नैतिकता और भौतिकता, दोनों के बीच संतुलन को बरकरार रखकर जीवन यापन करने में ही समझदारी है। उपदेशक कहता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो चौदहवें ने गुरुवार 14 मई को रोम के सपियेंसा यूनिवर्सिटी की भेंट की। यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्राध्यापकों को संबोधित करने के पूर्व संत पापलियो ने यूनिवर्सिटी गिरजाघर की भेंट की और महाविद्यालय समुदाय के सदस्यों का अभिवादन किया। अपने संदेश में संत पापलियो ने विद्यार्थियों को सच्ची शांति के शिल्पकार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, जब सत्य की चाहत एक खोज बन जाती है तो पढ़ाई में हमारी हिम्मत एक नई दुनिया के आशा की गवाही देती है। उन्होंने संत अगस्टिन को एक बेचैन नौजवान के रूप में याद दिलाया जिन्होंने गंभीर गलतियां की लेकिन सुंदरता और ज्ञान के लिए अपना जुनून कभी नहीं खोया। युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए संत पापलियो ने कहा कि आज की बेचैनी यह सवाल पूछती है, आप कौन हैं? यह सवाल हम चुपचाप ईश्वर से पूछते हैं। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हम खुद दे सकते हैं, फिर भी यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कभी अकेले नहीं दे सकते। वहीं उन्होंने महाविद्यालय के प्राध्यापकों से कहा, अपने विद्यार्थियों पर विश्वास करना सबसे जरूरी है, इसलिए आप स्वयं से पूछें, क्या मैं उन पर विश्वास या भरोसा करता हूँ। शिक्षा के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह युवाओं के दिलों से बातें करना है और सिर्फ दिमागी ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना नहीं। संत पापलियो ने दाई किंगडम कम अंतरधार्मिक वार्ता प्रार्थना कार्यक्रम को अपना वीडियो संदेश प्रेषित करते हुए अपनी आध्यात्मिक निकटता का सामीप्य प्रदान किया। अपने संदेश में संत पापा ने कहा, ख्रिस्त हमारे लिए सब कुछ है, उनमें हम जीवन की पूर्णता और उसके अर्थ को प्राप्त करते हैं। हम इस अनुभूति के बारे में चुपचाप नहीं रह सकते हैं, हमें इसे साहस में घोषित करने की जरूरत है क्योंकि यह सचमुच में सुसमाचार है जिसे हमें साझा करने की आवश्यकता है। ईश्वर हमारे संग है और हमारी मुलाकात उनसे हुई है और हम उसे दूसरों को बतलाने हेतु बुलाए जाते हैं। संत पापलियो ने संत पावलो बोलेवियन ख्रिस्तीय महाविद्यालय की 60वीं साल गिरह पर उन्हें अपना संदेश प्रेषित किया। संत पापा ने अपने संदेश में कहा कि महाविद्यालय का अस्तित्व संपूर्ण मानवीय विकास को बढ़ावा देना है क्योंकि सच्चे शिक्षण का उद्देश्य मानव के अंतिम लक्ष्य और उसके अलग अलग दलों की भलाई को प्रोत्साहित करना है जिसका वह सदस्य है। इस संरचना के अंतर्गत मानसिक और नैतिक योग्यता, जिम्मेदारी पूर्ण स्वतंत्रता और जन सामान्य की भलाई को बढ़ावा देना है जिससे व्यक्ति में सोचने विचारने की योग्यता, खुली वार्ता के भाव और सही रूप में कार्य करने की योग्यता विकसित की जा सके। संस्थान के आदर्श वाक्य वेरितास इन कारिताते प्रेम में निष्ठा के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह अभिव्यक्ति महाविद्यालय के प्रेरित कार्यों को संक्षेपित करती है जो विश्वास की आधारशिला में निहित है। ख्रिस्तीय परंपरा के अनुसार सच्चाई अपने में सिर्फ एक बौद्धिक या अमूर्त विचार नहीं है बल्कि यह अपने को यीशु ख्रिस्त के संग स्थापित करना है जो अपने को विशेष रूप से सत्य स्वरूप प्रकट करते हैं, जो संपूर्ण रूप में अपने को मानव के लिए व्यक्त करते और अपनी बुलाहट के बारे में स्पष्ट करते हैं। संत पापा ने कहा, सत्य की पहचान करना एक ऐसे व्यक्तिगत चेहरे और एक संबंध स्थापित करने वाला पहलू को व्यक्त करता है जो ज्ञान को हावी होने, अलगाव या सिर्फ उपयोग किए जाने से बचाता है। इसके बदले यह हमें न्याय और हर मानव खासकर सबसे कमजोर लोगों की सम्मानजनक सेवा हेतु अग्रसर करता है। वेरितास इन कारिताते एक शिक्षण संस्थान के बुलाहट को व्यक्त करता है जो ज्ञान और जीवन, बुद्धिमता और नैतिकता, विश्वास और तर्क, शैक्षणिक श्रेष्ठता और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ने की चाह है। वहीं संत पापलियो ने तुरिन में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हेतु अपना संदेश प्रेषित करते हुए
साहित्य, मानव सम्मान, शांति और भ्रातृत्व को बढ़ावा देते हुए युद्ध और उदासीनता की परिस्थिति में बच्चों के लिए दुनिया में आशा उत्पन्न करे कहा। हमें साहित्य की जरूरत है जो हर मानवीय सम्मान को, विशेष रूप से अति संवेदनशीलों को पहचान प्रदान करते हुए भ्रातृत्व और शांति का एक विद्यालय बनता हो। इस मौके पर संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि पढ़ने से दिमाग पोषित होता है, इसके द्वारा चेतना और अच्छी आलोचनात्मक समझ विकसित करने में मदद मिलती है। उन्होंने किताबें पढ़ने का आग्रह किया। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक्का।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

यह मत पूछो कि पहले के दिन क्यों इन दिनों से अच्छे थे। इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं। प्रज्ञा विरासत की तरह अच्छी बात है, इससे सूर्य देखने वाले लाभ उठाते हैं। प्रज्ञा और धन दोनों मनुष्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि वह ज्ञानी को जीवन प्रदान करता है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 7वें अध्याय में उपदेशक ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जैसे कि मृत्यु एक सच है, वह जीवन की वास्तविकता है और उससे भागने का प्रयास हमारी मूर्खता है। उपदेशक का आग्रह है कि मनुष्य मूर्ख नहीं बने और न ही मूर्खों जैसी हरकतें करे, बल्कि बुद्धि और विवेक के साथ अपना जीवन यापन करे। कहता है, अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बना देता है और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। श्रोताओं, अत्याचार, अनाचार और जुल्म एक प्रज्ञावान और समझदार इंसान की समझ को खत्म कर देता है, क्योंकि दुख सहने की भी एक हद होती है। अत्याचार सहते सहते व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि मजबूर होकर भ्रष्टाचार के आगे झुकने लगता है, जल्दबाजी में गलत फैसले ले बैठता है। इसीलिए उपदेशक कहता है कि किसी भी मामले में केवल शुरुआत पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि उसके अंत तक धैर्य रखा जाए, क्योंकि धैर्य अहंकार से अच्छा है। वह सब्र और सहन शक्ति की तारीफ करता है और क्रोध न करने का हमें परामर्श देता है, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह नष्ट हो जाती है। तदुपरांत 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पदों में उपदेशक अतीत पर विचार और विलाप करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। कहता है, यह मत कहो कि पहले के दिन अच्छे थे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यदि हम केवल अतीत के बारे में रोते रहेंगे तो अपने वर्तमान में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इस तरह अपने भविष्य को नष्ट कर डालेंगे। बुद्धिमानी तो इसी में है कि हम अपने वर्तमान की परवाह करें ताकि भविष्य सुरक्षित रह पाए। इसी में प्रज्ञा है, यही प्रज्ञावान की रीति है। उपदेशक धन के सदुपयोग का भी अनुरोध करता है। धन जीने के लिए आवश्यक है, किंतु धन के गुलाम न बना जाए। प्रज्ञा, विवेक और बुद्धिमानी से जीवन जिए तथा हर पल ईश्वर की महिमा का गुणगान किया करें।

तुलना में हम मनुष्यों का क्या स्थान है। यहाँ उपदेशक के दृष्टिकोण से इस पद में भाग्य या नियति की भावना छिपी हुई है। मनुष्य भाग्याधीन है और जो कुछ होना है उसकी अनिवार्यता सुनिश्चित है। बाइबल आचार्य फॉन ट्रैप कहते हैं, शेर के सामने खड़े होना बुद्धिमानी नहीं है और न ही तूफान में पाल उठाने की सोचना। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्णयों के आगे झुकना ही हितकर है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। फिर कहता है, सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। यहाँ उपदेशक सुलेमान का परामर्श है कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों बातों को ग्रहण करना चाहिए। उन्हें किस नजरिए से देखा जाए इसी पर विचार करता है। कहने का तात्पर्य यह कि जिंदगी तुम्हें जो दे उसे ले लो और जितना हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओं, सुख के दिन हम सभी को अच्छे लगते हैं, किंतु हम जानते हैं कि सभी दिन एक समान नहीं होते, कभी सुख तो कभी दुख, और दोनों में संतुलन बनाए रखकर जीना ही जीना है। जब जब सुख मिले, जब जब आनंद के पल आए, तो आप उसे अच्छी तरह जिए, भले कर्म करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि कब बुरे दिन आ जाएंगे यह किसी को पता नहीं होता। आगे सातवें अध्याय के 15 से लेकर 18 तक के पदों में उपदेशक न्याय और प्रज्ञा की चर्चा कर कहता है, मैंने व्यर्थ जीवन में इन दोनों को देखा है, धर्मी को जो अपने न्याय के कारण नष्ट हो गया और दुष्ट को जो अपनी दुष्टता के बावजूद बहुत समय तक जीवित रहा। न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, क्यों हानि करना चाहते हो। न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो, क्यों समय से पहले मरना चाहते हो। अच्छा यह है कि तुम एक को पकड़े रहो और दूसरे को हाथ से न जाने दो। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा। उपदेशक कहता है कि उसने अपने घमंड के दिनों में सब कुछ को देखा। जब कथित अच्छे दिन थे, उसने संसार की हर खुशी में खुशी मनाई। उसने दुष्टों को फलते फूलते देखा और आनंद मनाते देखा, जबकि भले लोगों को दुख झेलते देखा, जो कि सरासर अन्याय की बात है। उपदेशक मन ही मन यह दलील करता है कि यह कैसा न्याय है कि जो भला है, धर्मी है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है और जो दुष्ट है वह आराम की जिंदगी जीता है। धर्मी और धर्म परायण व्यक्ति अपनी नेकी में ही मर जाए, यह कहाँ का न्याय है। अस्तु कहता है, न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, और फिर न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो। कहता है, जीवन में संतुलन बनाए रखना बुद्धिमानी है। श्रोताओं, ऐसा प्रतीत होता है कि सुलेमान ने अपने पुत्रों से यह कहना चाहा कि वे जिंदगी की बेकार बातों को दृष्टिगत रखते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखें। नेक बनो लेकिन बहुत अधिक नहीं, समझदार बनो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, चालाक बनो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बेवकूफ बनो लेकिन बहुत अधिक नहीं। श्रोताओं, यह सोच लेना कि सब कुछ सही मात्रा में होना अच्छा है, संभवतः ठीक नहीं है, यह समझदारी नहीं है। याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह को, संत पॉल को और बहुत से अधिक संतों को उनके युग में संतुलित इंसान नहीं समझा जाता था। लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी की उनकी समझ ने उन्हें कई लोगों की नजर में असंतुलित बना दिया था। अस्तु, दुख और सुख, धर्म और संसार, नैतिकता और भौतिकता, दोनों के बीच संतुलन को बरकरार रखकर जीवन यापन करने में ही समझदारी है। उपदेशक कहता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो चौदहवें ने गुरुवार 14 मई को रोम के सपियेंसा यूनिवर्सिटी की भेंट की। यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्राध्यापकों को संबोधित करने के पूर्व संत पापा लियो ने यूनिवर्सिटी गिरजाघर की भेंट की और महाविद्यालय समुदाय के सदस्यों का अभिवादन किया। अपने संदेश में संत पापा लियो ने विद्यार्थियों को सच्ची शांति के शिल्पकार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, जब सत्य की चाहत एक खोज बन जाती है तो पढ़ाई में हमारी हिम्मत एक नई दुनिया की आशा की गवाही देती है। उन्होंने संत अगुस्टिन को एक बेचैन नौजवान के रूप में याद दिलाया जिन्होंने गंभीर गलतियां की लेकिन सुंदरता और ज्ञान के लिए अपना जुनून कभी नहीं खोया। युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि आज की बेचैनी यह सवाल पूछती है, आप कौन हैं? यह सवाल हम चुपचाप ईश्वर से पूछते हैं। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हम खुद दे सकते हैं, फिर भी यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कभी अकेले नहीं दे सकते। वहीं उन्होंने महाविद्यालय के प्राध्यापकों से कहा, अपने विद्यार्थियों पर विश्वास करना सबसे जरूरी है, इसलिए आप स्वयं से पूछें, क्या मैं उन पर विश्वास या भरोसा करता हूँ। शिक्षा के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह युवाओं के दिलों से बातें करना है और सिर्फ दिमागी ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना नहीं। संत पापलियो ने दाई किंगडम कम अंतरधार्मिक वार्ता प्रार्थना कार्यक्रम को अपना वीडियो संदेश प्रेषित करते हुए अपनी आध्यात्मिक निकटता का सामीप्य प्रदान किया। अपने संदेश में संत पापा ने कहा, ख्रिस्त हमारे लिए सब कुछ है, उनमें हम जीवन की पूर्णता और उसके अर्थ को प्राप्त करते हैं। हम इस अनुभूति के बारे में चुपचाप नहीं रह सकते हैं, हमें इसे साहस में घोषित करने की जरूरत है क्योंकि यह सचमुच में सुसमाचार है जिसे हमें साझा करने की आवश्यकता है। ईश्वर हमारे संग है और हमारी मुलाकात उनसे हुई है और हम उसे दूसरों को बतलाने हेतु बुलाए जाते हैं। संत पापा लियो ने संत पावलो बोलेवियन ख्रिस्तीय महाविद्यालय की 60वीं साल गिरह पर उन्हें अपना संदेश प्रेषित किया। संत पापा ने अपने संदेश में कहा कि महाविद्यालय का अस्तित्व संपूर्ण मानवीय विकास को बढ़ावा देना है क्योंकि सच्चे शिक्षण का उद्देश्य मानव के अंतिम लक्ष्य और उसके अलग अलग दलों की भलाई को प्रोत्साहित करना है जिसका वह सदस्य है। इस संरचना के अंतर्गत मानसिक और नैतिक योग्यता, जिम्मेदारी पूर्ण स्वतंत्रता और जन सामान्य की भलाई को बढ़ावा देना है जिससे व्यक्ति में सोचने विचारने की योग्यता, खुली वार्ता के भाव और सही रूप में कार्य करने की योग्यता विकसित की जा सके। संस्थान के आदर्श वाक्य वेरितास इन कारिताते प्रेम में निष्ठा के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह अभिव्यक्ति महाविद्यालय के प्रेरित कार्यों को संक्षेपित करती है जो विश्वास की आधारशिला में निहित है। ख्रिस्तीय परंपरा के अनुसार सच्चाई अपने में सिर्फ एक बौद्धिक या अमूर्त विचार नहीं है बल्कि यह अपने को यीशु ख्रिस्त के संग स्थापित करना है जो अपने को विशेष रूप से सत्य स्वरूप प्रकट करते हैं, जो संपूर्ण रूप में अपने को मानव के लिए व्यक्त करते और अपनी बुलाहट के बारे में स्पष्ट करते हैं। संत पापा ने कहा, सत्य की पहचान करना एक ऐसे व्यक्तिगत चेहरे और एक संबंध स्थापित करने वाला पहलू को व्यक्त करता है जो ज्ञान को हावी होने, अलगाव या सिर्फ उपयोग किए जाने से बचाता है। इसके बदले यह हमें न्याय और हर मानव खासकर सबसे कमजोर लोगों की सम्मानजनक सेवा हेतु अग्रसर करता है। वेरितास इन कारिताते एक शिक्षण संस्थान के बुलाहट को व्यक्त करता है जो ज्ञान और जीवन, बुद्धिमता और नैतिकता, विश्वास और तर्क, शैक्षणिक श्रेष्ठता और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ने की चाह है। वहीं संत पापा लियो ने तुरिन में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हेतु अपना संदेश प्रेषित करते हुए
साहित्य, मानव सम्मान, शांति और भ्रातृत्व को बढ़ावा देते हुए युद्ध और उदासीनता की परिस्थिति में बच्चों के लिए दुनिया में आशा उत्पन्न करे कहा। हमें साहित्य की जरूरत है जो हर मानवीय सम्मान को, विशेष रूप से अति संवेदनशीलों को पहचान प्रदान करते हुए भ्रातृत्व और शांति का एक विद्यालय बनता हो। इस मौके पर संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि पढ़ने से दिमाग पोषित होता है, इसके द्वारा चेतना और अच्छी आलोचनात्मक समझ विकसित करने में मदद मिलती है। उन्होंने किताबें पढ़ने का आग्रह किया। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: अमृत को कन्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
1: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, अटलांटिक महासागर से गुजर रहे यात्री जहाज में हंटा वायरस संक्रमण के प्रकोप ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हंटा वायरस प्रकोप से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम है और यह कोविड जैसी किसी नई महामारी की शुरुआत नहीं है। हंटा वायरस संक्रमण के चपेट में आए क्रूज जहाज MV होंटियस से सभी यात्रियों और नाविक दल के सदस्यों को स्पेन के द्वीप टेनेरीफ में सुरक्षित उतारने का कार्य पूरा हो गया है और अनेक यात्री अपने देश पहुंच चुके हैं। यात्रियों को उनके देश रवाना किए जाने के प्रयासों को UN स्वास्थ्य एजेंसी के सहयोग से स्पेनी प्रशासन, रोग रोकथाम व नियंत्रण के लिए यूरोपीय संघ और अनेक देशों की सरकारों ने साथ मिलकर पूरा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इस जहाज पर अब तक 11 संक्रमण मामले सामने आए, जिसमें से 9 की प्रयोगशाला में पुष्टि हो गई और 3 यात्रियों की मौत हुई। 2 अन्य मामलों में अभी परीक्षण के बाद कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकल पाया है और इसकी जांच की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस आपात राहत टीम के साथ टेनेरीफ में पहुंचे और उन्होंने स्पेनी सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि योजना के अनुरूप यात्रियों को सुरक्षित उतारने का कार्य संपन्न हुआ है। डॉक्टर टेड्रोस ने स्पेन, यूरोपीय साझीदारों, टेनेरीफ के स्थायी प्रशासन और नाविक दल के सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह एकजुटता की विजय है। यात्रियों का अंतिम समूह कैनेरी आइसलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए अपने देशों के लिए रवाना हो गया। नाविक दल के 30 से अधिक सदस्य और 2 स्वास्थ्य कर्मी अभी जहाज पर ही मौजूद हैं और यह क्रूज अब नीदरलैंड के रोटरडैम में स्थित अपने मूल बंदरगाह की ओर रवाना हुआ है। हंटा वायरस संक्रमण चीजों को कुतरने वाले जानवरों जैसे संक्रमित छोटे या बड़े चूहों के मल मूत्र या थूक के संपर्क में आने की वजह से फैलता है। किसी संक्रमित के संपर्क में आने के बाद मनुष्यों में इसके लक्षण 1 से 6 सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं, जिनमें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और पाचन तंत्र से जुड़ी मुश्किलें जैसे कि पेट दर्द, मितली और उल्टी हैं। WHO का मानना है कि बहुत नजदीकी संपर्क होने की स्थिति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि इसराइल और लेबनान के बीच 17 अप्रैल को घोषित युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद 17 अप्रैल के बाद से 380 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। UN प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूर्ण सम्मान करने की अपील दोहराई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
3: लेबनान में नाजुक युद्ध विराम लागू रहने के बावजूद लोगों की हत्याओं व विस्थापन का सिलसिला रुका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता टीमों ने बताया है कि दक्षिण इलाके में इसराइली हमलों के कारण गांव के गांव इतनी बुरी तरह तबाह हो गए हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। लबनानी अधिकारियों के अनुसार 2 मार्च में लबनान में स्थित हिजबुल्ला लड़ाकों और इसराइली बल के बीच लड़ाई के बाद 2700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के आकलन बताते हैं कि आने वाले महीनों में अतिरिक्त लगभग 1.5 लाख महिलाओं और लड़कियों को संकट स्तर की भूख या उससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ये कुल संख्या लगभग 6.5 लाख से अधिक हो जाएगी।
2: भू राजनैतिक उथल पुथल के बीच तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से जुड़े उस मुद्दे पर ध्यान बढ़ रहा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह मुद्दा है प्लास्टिक का उत्पादन, जो जीवाश्म ईंधनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। दुनिया की प्लास्टिक अर्थव्यवस्था केवल कचरे से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह जलवायु से जुड़ा मुद्दा भी है, जिससे न केवल पृथ्वी की जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या भी और गहरी होती है। प्लास्टिक की व्यापक जरूरत जीवाश्म ईंधनों की मांग को बनाए रख सकती है, लेकिन तेल की ऊंची कीमत बदलाव को तेज करने वाला एक छिपा हुआ कारण भी बन सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
4: अधिकांश पारंपरिक प्लास्टिक तेल और गैस से जुड़े कच्चे माल से बनाए जाते हैं। हाल में मध्य पूर्व में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इस कच्चे माल की लागत बढ़ गई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक बनाना भी महंगा हो गया है। ये मुद्दा केवल कीमतों का नहीं है, प्लास्टिक का उत्पादन जीवाश्म ईंधनों से जुड़ा है, इसलिए ये जलवायु परिवर्तन से भी गहराई से जुड़ा मुद्दा है। प्लास्टिक बनाने, ढोने और निपटाने की पूरी प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तेल की ऊंची कीमतें इस बदलाव को तेज कर सकती हैं। जब नया प्लास्टिक महंगा होता है तो कंपनियों के लिए जरूरत से ज्यादा पैकेजिंग करना कम फायदेमंद हो जाता है। एक बार इस्तेमाल होने वाले डब्बे, बोतलें और थैले भी पहले जितने सस्ते विकल्प नहीं रह जाते। ऐसे में पुनः उपयोग, रिफिल व्यवस्था, रिसाइकलिंग और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा मिल सकता है।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने कहा है कि विदेश में रहने वाले 3,40,00,000 से अधिक भारतीय प्रवासी केवल एक संख्या भर नहीं है, बल्कि वे भारत और अपने मेजबान देशों दोनों में परिवर्तन, नवाचार और विकास के दूत हैं। IOM ने भारत के स्थायी मिशन द्वारा UN मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय प्रवासियों की कहानी वास्तव में मानव गतिशीलता की शक्ति का एक प्रमाण है। इस पर विस्तृत जानकारी आइए सुनते हैं महबूब खान और पूजा यादव से।
5: IOM के रणनीतिक व बाहरी संपर्क मामलों के उप निदेशक किम एलिंग ने भारत के स्थायी मिशन द्वारा UN मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बहुत से प्रवासियों के लिए तत्काल महत्व के मुद्दे ये हैं कि क्या उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिल सकती है, अगर हाँ तो किन मंचों पर, किसी प्रवासी को अगर कोई रोजगार या आय वाले कामकाज का वादा किया गया है तो क्या वो वास्तव में मौजूद है, क्या रोजगार दस्तावेज या संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान किया जाएगा यानी उस पर कानूनी रूप से अमल किया जाएगा, अगर कुछ गलत होता है तो क्या कहीं से मदद मिलेगी। ये कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं और भारत का ई माइग्रेट डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से कुछ सवालों के जवाब मुहैया कराने की कोशिश करता है।
3: भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धान सिंह ने इस कार्यक्रम में कहा कि ग्लोबल मोबिलिटी यानी दुनिया भर में लोगों का सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन सुनिश्चित करना सभी देशों की एक साझा जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने कहा कि देश की सरकार प्रवासन के लिए कानूनी और नियमित मार्गों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपने उन नागरिकों की मदद करने के लिए भी जो विदेशों में अवसरों की तलाश करते हैं।
2: हॉलीवुड के अभिनेता और मानवतावादी रिचर्ड गेयर ने कहा है कि आवाज सभी अन्य अधिकारों का प्रवेश द्वार है। आश्रयहीनता के मुद्दे पर विचार करने के लिए विश्व शहरी मंच का 13वां सत्र 17 से 22 मई तक अजरबैजान की राजधानी बाकू शहर में होने वाला है, जिसका विषय है आवास की व्यवस्था, सुरक्षित और सहनशील शहर का समुदाय। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

संदेश प्रकाशित कर विश्व को परमाणु हथियार, युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरों के प्रति सचेत कराया। ये ट्वीट उसी संदेश के अंश हैं जिसे संत पापा लियो XIV ने गुरुवार 14 मई को रोम के ला सपियंसा विश्वविद्यालय में प्रसारित किया था। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, हम कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश यह दुनिया युद्ध और युद्ध जैसी भाषा से बिगड़ी हुई है। तर्कणा का यह प्रदूषण भू राजनीतिक दायरे से आता है और हर सामाजिक रिश्ते पर कब्जा कर लेता है। ऐसा कोई भी आसान तरीका जिससे वैमनस्यता उत्पन्न हो, उसे विचारों की जटिलता और स्मृति के समझदार और विवेकी अभ्यास के द्वारा ठीक करना होगा, विशेषकर विद्यालयों में। और अपने दूसरे ट्वीट में संत पापा लिखते हैं, विगत वर्ष संपूर्ण विश्व और यूरोप में सैन्य खर्चे में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पुनः हथियार बंद होने से तनाव और असुरक्षा बढ़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश कम होता है, कूटनीति में भरोसा कम हो जाता है और धनी लोग और अधिक धनवान बन जाते हैं, जिन्हें आम लोगों की भलाई की कोई परवाह नहीं होती। इसे डिफेंस अथवा निवारक या रक्षा का नाम नहीं दिया जा सकता। तीसरे संदेश में संत पापा लिखते हैं, हमें सैन्य और नागर दोनों मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग को लेकर सावधान रहना चाहिए, ताकि यह नीति निर्माण और निर्णय लेने में मानवीय जिम्मेदारी को खत्म न कर दे या लड़ाई की दुखद घटना को और अधिक न बढ़ा दे। यूक्रेन, गाजा और फिलिस्तीनी इलाकों, लेबनान और ईरान की घटनाएं युद्ध और नई टेक्नोलॉजी के बीच रिश्ते के अमानवीय विकास को दिखाती हैं। और अपने अंतिम प्रकाशित ट्वीट में संत पापा ने लिखा, अध्ययन, अनुसंधान और निवेश को उल्टी दिशा में जाना चाहिए और जीवन के लिए एक वृहद हाँ बनना चाहिए। निर्दोष जीवन के लिए हाँ, युवा जिंदगी के लिए हाँ, उन लोगों की जिंदगी के लिए हाँ जो शांति और न्याय की मांग करते हैं। इसी बीच इटली के ट्यूरिन शहर में इस सप्ताह 14 से 18 मई तक जारी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले को एक तार संदेश प्रेषित कर संत पापा लियो XIV ने इस तथ्य की पुनरावृत्ति की कि साहित्य को मानव सम्मान, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। संत पापा ने कहा कि इस समय विश्व को ऐसे साहित्य की जरूरत है जो हर व्यक्ति की गरिमा को पहचानने में मदद करे, विशेषकर सबसे कमजोर व्यक्ति की, और साथ ही ऐसे साहित्य की जो द्रुत गति से भाईचारे और शांति की पाठशाला बन जाए। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने संत पापा लियो XIV की ओर से उक्त संदेश ट्यूरिन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल रोबर्टो रेपोलो को भेजकर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने वालों का अभिवादन किया और उनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित की। यह संदेश गुरुवार सुबह मेले के उद्घाटन के अवसर पर मेले के निर्देशक द्वारा प्रतिभागियों के समक्ष पढ़ा गया। लेखिका एल्सा मोरांते की पुस्तक से लिए इस वर्ष के पुस्तक मेले के शीर्षक द वर्ल्ड सेव्ड बाय किड्स को संत पापा लियो ने महत्वपूर्ण और समय के हिसाब से सही निरूपित किया। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि ऐसे समय में जब युद्ध की भयावहता और बेपरवाही एवं उदासीनता की ठंड से घुटन महसूस हो रही है, बच्चे दुनिया को नई नजर से देखने की अपनी जन्मजात क्षमता से समाज में आशा की रोशनी को प्रज्वलित करते हैं। संदेश के अंत में संत पापा ने उम्मीद जताई कि यह पुस्तक मेला संवाद और सौहार्द को बढ़ावा देने में संस्कृति के महत्व के बारे में नई जागरूकता उत्पन्न करेगा। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षों ने संघर्ष प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 आदिवासी ईसाई नेताओं की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा की है, जहां नित्य बढ़ते बंधक संकट ने तनाव को और गहरा कर दिया है। बुधवार 13 मई को भारतीय कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन ने एक वक्तव्य प्रकाशित कर इन हत्याओं की निंदा करते हुए कहा, हम धार्मिक नेताओं के खिलाफ किए गए इस घृणित कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, जो सामाजिक अशांति के इस मुश्किल समय में आशा और शक्ति का एक अहम जरिया बने हुए हैं। धर्माध्यक्षों ने कहा कि वे 13 मई को एक हमले में थादो बैप्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कुकी लोगों में सबसे वरिष्ठ पादरी वोमथांग सितलो और एक पादरी सहित कुकी चर्च के 2 वरिष्ठ धार्मिक नेताओं की हत्या से बहुत दुखी हैं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, अटलांटिक महासागर से गुजर रहे यात्री जहाज में हंटा वायरस संक्रमण के प्रकोप ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हंटा वायरस प्रकोप से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम है और यह कोविड जैसी किसी नई महामारी की शुरुआत नहीं है। हंटा वायरस संक्रमण के चपेट में आए क्रूज जहाज MV होंटियस से सभी यात्रियों और नाविक दल के सदस्यों को स्पेन के द्वीप टेनेरीफ में सुरक्षित उतारने का कार्य पूरा हो गया है और अनेक यात्री अपने देश पहुंच चुके हैं। यात्रियों को उनके देश रवाना किए जाने के प्रयासों को UN स्वास्थ्य एजेंसी के सहयोग से स्पेनी प्रशासन, रोग रोकथाम व नियंत्रण के लिए यूरोपीय संघ और अनेक देशों की सरकारों ने साथ मिलकर पूरा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इस जहाज पर अब तक 11 संक्रमण मामले सामने आए, जिसमें से 9 की प्रयोगशाला में पुष्टि हो गई और 3 यात्रियों की मौत हुई। 2 अन्य मामलों में अभी परीक्षण के बाद कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकल पाया है और इसकी जांच की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस आपात राहत टीम के साथ टेनेरीफ में पहुंचे और उन्होंने स्पेनी सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि योजना के अनुरूप यात्रियों को सुरक्षित उतारने का कार्य संपन्न हुआ है। डॉक्टर टेड्रोस ने स्पेन, यूरोपीय साझीदारों, टेनेरीफ के स्थायी प्रशासन और नाविक दल के सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह एकजुटता की विजय है। यात्रियों का अंतिम समूह कैनेरी आइसलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए अपने देशों के लिए रवाना हो गया। नाविक दल के 30 से अधिक सदस्य और 2 स्वास्थ्य कर्मी अभी जहाज पर ही मौजूद हैं और यह क्रूज अब नीदरलैंड के रोटरडैम में स्थित अपने मूल बंदरगाह की ओर रवाना हुआ है। हंटा वायरस संक्रमण चीजों को कुतरने वाले जानवरों जैसे संक्रमित छोटे या बड़े चूहों के मल मूत्र या थूक के संपर्क में आने की वजह से फैलता है। किसी संक्रमित के संपर्क में आने के बाद मनुष्यों में इसके लक्षण 1 से 6 सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं, जिनमें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और पाचन तंत्र से जुड़ी मुश्किलें जैसे कि पेट दर्द, मितली और उल्टी हैं। WHO का मानना है कि बहुत नजदीकी संपर्क होने की स्थिति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि इसराइल और लेबनान के बीच 17 अप्रैल को घोषित युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद 17 अप्रैल के बाद से 380 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। UN प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूर्ण सम्मान करने की अपील दोहराई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
3: लेबनान में नाजुक युद्ध विराम लागू रहने के बावजूद लोगों की हत्याओं व विस्थापन का सिलसिला रुका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता टीमों ने बताया है कि दक्षिण इलाके में इसराइली हमलों के कारण गांव के गांव इतनी बुरी तरह तबाह हो गए हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। लबनानी अधिकारियों के अनुसार 2 मार्च में लबनान में स्थित हिजबुल्ला लड़ाकों और इसराइली बल के बीच लड़ाई के बाद 2700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के आकलन बताते हैं कि आने वाले महीनों में अतिरिक्त लगभग 1.5 लाख महिलाओं और लड़कियों को संकट स्तर की भूख या उससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ये कुल संख्या लगभग 6.5 लाख से अधिक हो जाएगी।
2: भू राजनैतिक उथल पुथल के बीच तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से जुड़े उस मुद्दे पर ध्यान बढ़ रहा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह मुद्दा है प्लास्टिक का उत्पादन, जो जीवाश्म ईंधनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। दुनिया की प्लास्टिक अर्थव्यवस्था केवल कचरे से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह जलवायु से जुड़ा मुद्दा भी है, जिससे न केवल पृथ्वी की जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या भी और गहरी होती है। प्लास्टिक की व्यापक जरूरत जीवाश्म ईंधनों की मांग को बनाए रख सकती है, लेकिन तेल की ऊंची कीमत बदलाव को तेज करने वाला एक छिपा हुआ कारण भी बन सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
4: अधिकांश पारंपरिक प्लास्टिक तेल और गैस से जुड़े कच्चे माल से बनाए जाते हैं। हाल में मध्य पूर्व में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इस कच्चे माल की लागत बढ़ गई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक बनाना भी महंगा हो गया है। ये मुद्दा केवल कीमतों का नहीं है, प्लास्टिक का उत्पादन जीवाश्म ईंधनों से जुड़ा है, इसलिए ये जलवायु परिवर्तन से भी गहराई से जुड़ा मुद्दा है। प्लास्टिक बनाने, ढोने और निपटाने की पूरी प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तेल की ऊंची कीमतें इस बदलाव को तेज कर सकती हैं। जब नया प्लास्टिक महंगा होता है तो कंपनियों के लिए जरूरत से ज्यादा पैकेजिंग करना कम फायदेमंद हो जाता है। एक बार इस्तेमाल होने वाले डब्बे, बोतलें और थैले भी पहले जितने सस्ते विकल्प नहीं रह जाते। ऐसे में पुनः उपयोग, रिफिल व्यवस्था, रिसाइकलिंग और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा मिल सकता है।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने कहा है कि विदेश में रहने वाले 3,40,00,000 से अधिक भारतीय प्रवासी केवल एक संख्या भर नहीं है, बल्कि वे भारत और अपने मेजबान देशों दोनों में परिवर्तन, नवाचार और विकास के दूत हैं। IOM ने भारत के स्थायी मिशन द्वारा UN मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय प्रवासियों की कहानी वास्तव में मानव गतिशीलता की शक्ति का एक प्रमाण है। इस पर विस्तृत जानकारी आइए सुनते हैं महबूब खान और पूजा यादव से।
5: IOM के रणनीतिक व बाहरी संपर्क मामलों के उप निदेशक किम एलिंग ने भारत के स्थायी मिशन द्वारा UN मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बहुत से प्रवासियों के लिए तत्काल महत्व के मुद्दे ये हैं कि क्या उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिल सकती है, अगर हाँ तो किन मंचों पर, किसी प्रवासी को अगर कोई रोजगार या आय वाले कामकाज का वादा किया गया है तो क्या वो वास्तव में मौजूद है, क्या रोजगार दस्तावेज या संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान किया जाएगा यानी उस पर कानूनी रूप से अमल किया जाएगा, अगर कुछ गलत होता है तो क्या कहीं से मदद मिलेगी। ये कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं और भारत का ई माइग्रेट डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से कुछ सवालों के जवाब मुहैया कराने की कोशिश करता है।
3: भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धान सिंह ने इस कार्यक्रम में कहा कि ग्लोबल मोबिलिटी यानी दुनिया भर में लोगों का सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन सुनिश्चित करना सभी देशों की एक साझा जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने कहा कि देश की सरकार प्रवासन के लिए कानूनी और नियमित मार्गों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपने उन नागरिकों की मदद करने के लिए भी जो विदेशों में अवसरों की तलाश करते हैं।
2: हॉलीवुड के अभिनेता और मानवतावादी रिचर्ड गेयर ने कहा है कि आवाज़ सभी अन्य अधिकारों का प्रवेश द्वार है। आश्रयहीनता के मुद्दे पर विचार करने के लिए विश्व शहरी मंच का 13वां सत्र 17 से 22 मई तक अजरबैजान की राजधानी बाकू शहर में होने वाला है, जिसका विषय है आवास की व्यवस्था, सुरक्षित और सहनशील शहर का समुदाय। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो चौदवे ने गुरुवार 14 मई को अपनी वेबसाइट पॉन्टिफेक्स पर 4 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर विश्व को परमाणु हथियार, युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरों के प्रति सचेत कराया। ये ट्वीट उसी संदेश के अंश हैं जिसे संत पापा लियो चौदवे ने गुरुवार 14 मई को रोम के ला सपियंसा विश्वविद्यालय में प्रसारित किया था। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, हम कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश यह दुनिया युद्ध और युद्ध जैसी भाषा से बिगड़ी हुई है। तर्कणा का यह प्रदूषण भू राजनैतिक दायरे से आता है और हर सामाजिक रिश्ते पर कब्जा कर लेता है। ऐसा कोई भी आसान तरीका जिससे वैमनस्यता उत्पन्न हो, उसे विचारों की जटिलता और स्मृति के समझदार और विवेकी अभ्यास के द्वारा ठीक करना होगा, विशेषकर विद्यालयों में। और अपने दूसरे ट्वीट में संत पापा लिखते हैं, विगत वर्ष संपूर्ण विश्व और यूरोप में सैन्य खर्चे में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पुनः हथियार बंद होने से तनाव और असुरक्षा बढ़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश कम होता है। कूटनीति में भरोसा कम हो जाता है और धनी लोग और अधिक धनवान बन जाते हैं, जिन्हें आम लोगों की भलाई की कोई परवाह नहीं होती। इसे डिफेंस अथवा निवारक या रक्षा का नाम नहीं दिया जा सकता। तीसरे संदेश में संत पापा लिखते हैं, हमें सैन्य और नागर दोनों मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग को लेकर सावधान रहना चाहिए, ताकि यह नीति निर्माण और निर्णय लेने में मानवीय जिम्मेदारी को खत्म न कर दे या लड़ाई की दुखद घटना को और अधिक न बढ़ा दे। यूक्रेन, गाजा और फिलिस्तीनी इलाकों, लेबनान और ईरान की घटनाएं युद्ध और नई टेक्नोलॉजी के बीच रिश्ते के अमानवीय विकास को दिखाती हैं। और अपने अंतिम प्रकाशित ट्वीट में संत पापा ने लिखा, अध्ययन, अनुसंधान और निवेश को उल्टी दिशा में जाना चाहिए और जीवन के लिए एक वृहद हाँ बनना चाहिए। निर्दोष जीवन के लिए हाँ, युवा जिंदगी के लिए हाँ, उन लोगों की जिंदगी के लिए हाँ जो शांति और न्याय की मांग करते हैं। इसी बीच इटली के ट्यूरिन शहर में इस सप्ताह 14 से 18 मई तक जारी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले को एक तार संदेश प्रेषित कर संत पापा लियो चौदवे ने इस तथ्य की पुनरावृत्ति की कि साहित्य को मानव सम्मान, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। संत पापा ने कहा कि इस समय विश्व को ऐसे साहित्य की जरूरत है जो हर व्यक्ति की गरिमा को पहचानने में मदद करे, विशेषकर सबसे कमजोर व्यक्ति की, और साथ ही ऐसे साहित्य की जो द्रुत गति से भाईचारे और शांति की पाठशाला बन जाए। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने संत पापा लियो चौदवें की ओर से उक्त संदेश ट्यूरिन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल रोबर्टो रेपोलो को भेजकर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने वालों का अभिवादन किया और उनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित की। यह संदेश गुरुवार सुबह मेले के उद्घाटन के अवसर पर मेले के निर्देशक द्वारा प्रतिभागियों के समक्ष पढ़ा गया। लेखिका एल्सा मोरांते की पुस्तक से लिए इस वर्ष के पुस्तक मेले के शीर्षक द वर्ल्ड सेव्ड बाय किड्स को संत पापा लियो ने महत्वपूर्ण और समय के हिसाब से सही निरूपित किया। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि ऐसे समय में जब युद्ध की भयावहता और बेपरवाही एवं उदासीनता की ठंड से घुटन महसूस हो रही है, बच्चे दुनिया को नई नजर से देखने की अपनी जन्मजात क्षमता से समाज में आशा की रोशनी को प्रज्वलित करते हैं। संदेश के अंत में संत पापा ने उम्मीद जताई कि यह पुस्तक मेला संवाद और सौहार्द को बढ़ावा देने में संस्कृति के महत्व के बारे में नई जागरूकता उत्पन्न करेगा। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षों ने संघर्ष प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 आदिवासी ईसाई नेताओं की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा की है, जहां नित्य बढ़ते बंधक संकट ने तनाव को और गहरा कर दिया है। बुधवार 13 मई को भारतीय कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन ने एक वक्तव्य प्रकाशित कर इन हत्याओं की निंदा करते हुए कहा, हम धार्मिक नेताओं के खिलाफ किए गए इस घृणित कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, जो सामाजिक अशांति के इस मुश्किल समय में आशा और शक्ति का एक अहम जरिया बने हुए हैं।
धर्माध्यक्षों ने कहा कि वे 13 मई को एक हमले में थादो बैप्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कुकी लोगों में सबसे वरिष्ठ पादरी वोमथांग सितलो और एक पादरी सहित कुकी चर्च के 2 वरिष्ठ धार्मिक नेताओं की हत्या से बहुत दुखी हैं। बंदूकधारियों ने पादरियों पर तब हमला किया जब वे चुराचांदपुर जिले में एक धार्मिक सभा में शामिल होने के बाद कांग पोखपी शहर लौट रहे थे। इस हमले में 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। मणिपुर में लड़ रहे समूहों के बीच शांति की अपील करते हुए धर्माध्यक्षों ने कहा, हिंसा सिर्फ जख्मों को और गहरा करती, दुख को बढ़ाती और हमारे समुदायों को जोड़ने वाले रिश्तों को कमजोर करती है। म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर में मई 2023 से मुख्य रूप से आदिवासी ईसाई कुकी समुदायों और मुख्य रूप से हिंदू मेतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा फैली हुई है। इस हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हो गए हैं और 60,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। रोम धर्म प्रांत और रोम स्थित संत इजिडियो लोक धर्मी समुदाय के तत्वाधान में गाजा से आए फिलिस्तीनी छात्रों का एक समूह इस समय रोम के ला सपियंसा विश्वविद्यालय में युद्ध के बाद फिर से अपने भविष्य की शुरुआत कर पा रहा है। इन छात्रों ने 14 मई को संत पापा लियो 14वें से मुलाकात की और अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। नादा जौदा और सलेम अबू मुस्तफा उन 4 लोगों में से हैं जिन्हें रोम के ला सपियंसा विश्वविद्यालय में दाखिला मिला है। उनका साहसिक कार्य जोरदार तरीके से शुरू हुआ क्योंकि 14 मई को संत पापा लियो 14वें ने ला सपियंसा का दौरा कर विश्वविद्यालयीन समुदाय को अपना संदेश दिया था। नादा और सालेम ने हमारे संवाददाताओं से कहा कि संत पापा से मुलाकात करना और उनका स्वागत करना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। संत पापा ने अपने संदेश में गाजा पट्टी से आए छात्रों के लिए मानवतावादी गलियारों को खोलने हेतु ला सपियंसा विश्वविद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अकादमिक समुदाय से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय को मेल मिलाप, बातचीत और शांति निर्माण की जगह बनाएं। उन्होंने गाजा के छात्रों को शरण देने और उनके अध्ययन अध्यापन में निवेश करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी के छात्रों की मौजूदगी अध्ययन और अनुसंधान में निवेश करने की जरूरत का एक दिल को छू लेने वाला सबूत थी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।